Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

जिब्रेले जिब्रेले जिब्रेले आयो आयो जिब्रेले मस्ती में आयो आयो जिब्रेले।

0: तिमीलाई छोड जानु मेरो रह होइन, बाध्यता हो। म जहाँ गए तपाईँ मेरो मन पनि तिमीसँग हुन्छ।
1: रॉबिन जी, मजबूरी का नाम देकर आप मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी पूरी जिंदगी आपका इंतजार करूंगी।
0: मल देखो चीनी आप सुखा।

0: இளம்பு பிரேக் டைம். New Aruniku Hotel and Restaurant Private Limited. Restaurant Private Limited. Chautara Shagat Sugadi Nagarpalika 5 Sindhupazo. Our services: deluxe room with AC, hot and cool water, LED TV, seminar hall, restaurant and bar, free Wi-Fi, parking area, familiar and joyful environment. Customer satisfaction is our conjugance. New Aruniku Hotel and Restaurant Private Limited. Chautara Shagat Sugadi Nagarpalika 5 Sindhupazo. Email: Hotel Aruniku @gmail.com. Contract 011-620-326-960-982293. New Aruniku Hotel and Restaurant Private Limited, Chautara Shankar Sugadi Nagarpalika 5, Sindhupalcha.
1: बा
2: हजुर बुहारी,
1: ग्रिल मेसिन, फर्निचर का मेसिन, ट्रैक्टर का पार्ट्सहरू चाहिए थियो, लिन पठाउनु भएको छ, कहाँ जाने होला?
2: ए बुहारी, त्यसको लागि पिर लिनै पर्दैन नि, सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा घले इन्टरप्राइज छँदै छ नि। ट्रैक्टर र जेनेरेटर मर्मतका लागि होम सर्भिसको सुविधा, रुख काट्ने मेसिन, चेन अथवा चेनको पार्ट पुर्जा फेर्ने एउटै मात्र पसल, त्यही घले इन्टरप्राइज त हो नि। हजुर, हामी कहाँ ग्रिल मेसिन, फर्निचर मेसिन, ट्रैक्टर पावर टिलर का पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विद्युतीय उपकरण चाहिएमा वा स्तरीय हाउस वायरिंग वा प्लम्बिङ सेवा चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। घले इन्टरप्राइजेस, सिन्धुपाल्चोक चौतारा, जिल्ला हुला कार्यालयको ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर नारायण घले। मोबाइल 98493406667 र 98187798। मेसिनरी सामानको समस्याको एकमात्र विकल्प घले इन्टरप्राइजेस।
3: सेवा बुक स्टोर चौतारा 5 सिन्धुपाल्चोक।
4: हाम्रा सेवाहरू:
3: स्टेशनरीका सम्पूर्ण सामानहरू,
4: फोटोकपी प्रिन्ट,
3: कलर प्रिन्ट,
4: पीवीसी आईडी कार्ड।